0: ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങൾ വീണ്ടും 9 മണിക്ക് ആകാശവാണി അനന്തപുരി FM. സമയം 8 മണി കഴിഞ്ഞ 45 മിനിറ്റ്. ഇപ്പോൾ സ്പോൺസേഡ് പരിപാടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ്.
1: വി ബ്രിങ് യുവർ ടോക്ക് ഓൺ സീനിയർ സിറ്റിസൺസ്, കെയർ സിസ്റ്റം, വൾനറബിലിറ്റി ടു അബ്യൂസ്, വെൽഫെയർ, അവേർനെസ് ആൻഡ് സ്ട്രെങ്തനിങ് ആക്സസ് ടു ജസ്റ്റിസ് ബൈ ഡോക്ടർ ആഭ ചൗധരി, ഫൗണ്ടർ സെക്രട്ടറി ആൻഡ് ചെയർപേഴ്സൺ അനുഗ്രഹ RRTC. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
2: Senior citizens care ka chahe wo gaon mein ho chahe wo shaharon mein ho uske prati jagrukta karni ho ya policy makers NGOs civil society ya wider society ko isme integrate karna ho ek broad picture ki bharat dheere se hi sahi par aging tsunami ki aur hum dheere dheere badh rahe hain behtar medical suvidhaein और जो लॉन्जिविटी है उसकी वजह से जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ रही है और धीरे धीरे ये जो संख्या है ये चिंता का कारण मेरे विचार से नहीं है. यदि हम सही प्रकार के केयर सिस्टम्स, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स और जो हमारी मल्टीपल पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की उनका क्रियान्वयन सही रूप से करें तो ये चैलेंज नहीं पर बल्कि हमारे लिए एक ये बोन बनकर आ सकता है. हमारी संस्कृति में और हमारे समाज में प्राचीन काल से ही जो एक संयुक्त परिवार ज्वाइंट फैमिली सिस्टम रहा है और सीनियर सिटीजन्स के प्रति केयर और रिस्पेक्ट की एक भावना रही है उसमें कुछ हल्की दरारें या कुछ हल्के स्ट्रेन्स हम जरूर देख रहे हैं. 80% लोग हैं वरिष्ठ नागरिक वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और एक सोच का विषय ये है कि उसमें से एक बहुत बड़ा तबका इलिटरेट है, कम पढ़ा लिखा है और सिर्फ फिजिकल लेबर में ही वो एंगेज रहते हैं. 58% से ज़्यादा महिलाएं जो 60 साल के ऊपर हैं कि उनकी जो आर्थिक दशा है या सोशल सपोर्ट है, इमोशनल सपोर्ट है उसके प्रति ज़्यादा हमें काम करने की आवश्यकता है. ब्रॉडली जो चैलेंजेस वृद्धावस्था अपने साथ लेकर आती है वो भावनात्मक स्तर पर ही नहीं बल्कि शारीरिक और मानसिक स्तर पर भी बहुत ज़्यादा डॉन्टिंग होते हैं. वृद्धावस्था के साथ साथ बीमारियों का घेरना, अकेलापन और बच्चों का बाहर शहरों में चले जाना.

0: बाहर काम करना, और क्योंकि शरीर क्षीण है, मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से आप उतने सक्षम नहीं हैं, तो घर से ज़्यादा बाहर निकलकर आप काम काम भी उतना ज़्यादा नहीं कर पाते, इसलिए आजीविका संबंधी परेशानियां भी वृद्धावस्था के साथ एक चैलेंज के रूप में उभर रही हैं। कुछ साल पहले अखबारों में ये भी पढ़ा था, जो बेगरी करते हैं काफ़ी सारी वरिष्ठ नागरिक महिलाएं, वो भी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन तक का वो शिकार हुई हैं। फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन या फाइनेंशियल अब्यूज़ ज़्यादा चर्चा में रहता है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी से संबंधित है। उनको डरा के, धमका के या बहला फुसला के उनके चेक साइन करवा लेना, प्रॉपर्टी के कागज़ अपने नाम करवा लेना, फिर उनको घर से बाहर निकाल देना, ये अक्सर आप समय समय पर मीडिया में चर्चा में पढ़ते रहे हैं। जैसे जैसे समाज में बदलाव आ रहे हैं, पारिवारिक ढांचा एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ से जा रहा है, तो पहले जो एक साइलेंट प्रॉब्लम हुआ करती थी या घर के बंद दरवाजों के पीछे ये बात होती थी, अब धीरे धीरे मीडिया और बाकी अवेयरनेस या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, सीनियर सिटीजन एसोसिएशन, पेंशनर्स एसोसिएशन एंड इवन एनजीओस इस चीज को बाहर अब ला के खुले में बात कर रही हैं। अब ये प्रश्न आता है, जब ये सर्वे हुआ पिछले 7 साल से, कि ये एल्डर अब्यूज करते कौन हैं, तो बहुत चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए कि कम से कम जो सर्वेक्षण ने शो किया, पूरे इंडिया में 82% एडल्ट जो उनके बच्चे हैं, सन्स और डॉटर्स, वही इसको, और डॉटर इन लॉ के बाद जो उनके देखभाल करता है, चाहे वो फॉर्मल देखभाल करता है या इनफॉर्मल देखभाल करता है, जो बेड रिडन लोग हैं वो इसके शिकार पाए गए। तो ये सवाल उठता है कि अब्यूज तो बच्चों का भी होता है, महिलाओं का भी होता है, तो वरिष्ठ नागरिकों के प्रति ज्यादा हम क्यों वल्नरेबल होते हैं, क्यों ससेप्टेबल होते हैं एल्डर अब्यूज के? तो उसके कुछ कारण हैं। आपने सभी ने ये शब्द जरूर सुना होगा, अल्जाइमर्स या डिमेंशिया। तो मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज काफ़ी ज़्यादा अब प्रोनाउंस होते जा रहे हैं, और यदि व्यक्ति को अपने बारे में, अपनी कंडीशन के बारे में, अपने फाइनेंसेस के बारे में, अपने खान पान के बारे में सुदबुद्ध ही नहीं है, भूलने की समस्या आ रही है, तो वो अब्यूज़ के प्रति ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। दूसरा, खासकर शहरी इलाकों में अकेलापन या बच्चे बाहर चले गए, सोशल आइसोलेशन, अपने हम उम्र लोगों के साथ मिलना जुलना कम कर देना, बाहर निकलना कम कर देना, उससे भी एक वल्नरेबिलिटी अब्यूज़ के प्रति बढ़ती है। और एक और जो सर्वेक्षण में बात सामने आई, जो केयर गिवर्स का स्ट्रेस है, उसमें भी जो उनकी देखभाल करते हैं लोग, कई बार वो प्रेशर नहीं झेल पाते, और उस फ्रस्ट्रेशन में उन लोगों के प्रति, वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अत्याचार या दुर्भावना उनके प्रति आती है। इसमें एक चीज और देखी गई है कि वो वरिष्ठ नागरिक जो फाइनेंशियली इनसिक्योर हैं, जिनकी रेगुलर इनकम नहीं है, सेविंग्स नहीं है, या अपने अधिकारों या जो स्कीम्स हैं सरकार की या कानून है उनके प्रति बिल्कुल कम जानकारी है, वो ज़्यादा फिजिकली और इमोशनली वल्नरेबल रहते हैं एल्डर अब्यूज के प्रति। और जो डिपेंडेंस भी, जो एक निर्भरता है केयर गिवर के प्रति, वो भी कहीं ना कहीं उनकी इस वल्नरेबिलिटी को बढ़ाती है। एक अब्यूज है वो जो उनके केयर गिवर समाज या परिवार के लोग करते हैं, एक वो प्रकार का अब्यूज है जो सेल्फ निग्लेक्ट है। व्यक्ति जब बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है या समाज के प्रति या परिवार के प्रति उदासीन हो जाता है, तो वो स्वयं अपने प्रति भी उदासीन हो जाता है, और ऐसे में सही समय पे दवाई लेना, खाना लेना, अपनी हाइजीन मेंटेन करना, अपने लिए भजन पूजन, बाहर जाना, वो सब चीज़ें जो स्टॉप कर देते हैं, वो अपने प्रति भी निग्लेक्ट या अब्यूज माना जाता है। जो एक ब्रॉड साइंस हम सब जानते हैं फिजिकल अब्यूज के, निग्लेक्ट के, वो चोट के निशान हो सकते हैं, बर्न्स के निशान हो सकते हैं, या किसी भी वरिष्ठ नागरिक जो नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हैं पर एकदम से वो विड्रॉ कर गए, बातचीत उन्होंने बंद कर दी, बाहर निकलना, दोस्तों से मिलना या रोज की जो एक्टिविटीज हैं वो बिल्कुल बंद कर दी, और उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन में मान लीजिए अचानक से आप कोई बहुत ज्यादा बदलाव देखते हैं कि पहले वो ठीक ठाक थे और अब बिल्कुल ही उनके लिए कोई खर्च खर्च करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, या वो घर में से आपको उनके मारपीट की या उनके आर्ग्यूमेंट्स की अगर आपको आवाज़ें सुनाई देती हैं, उनके देखभालकर्ता और वरिष्ठ नागरिक के प्रति उनका हाइजीन, उनकी डेली ज़रूरतें, उनकी दवाई, ये सब, और अनएक्सप्लेन्ड अगर उनकी तबीयत खराब बहुत लंबे समय तक चल रही है, तो ये कुछ सिम्टम्स या साइंस होते हैं जिनसे आप पता कर सकते हैं कि वरिष्ठ नागरिक के साथ सब कुछ सही नहीं हो रहा है। इंटिमिडेशन, किसी भी बात पे उनको साइडलाइन करना, उनको उनके बारे में चर्चा नहीं करना, फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है और अब काफ़ी बढ़ता जा रहा है। हमारी जो मंत्रालय की नेशनल हेल्पलाइन है 14567 एल्डर लाइन जो है, उस पर इसके बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं, जिसमें या तो बरगला के या प्यार से या उनको बहला फुसला के, चाहे वो उनके घर में काम करने वाली डोमेस्टिक हेल्प हों, चाहे परिवार के लोग हों, देखभाल करता हों, तो वो एक बार अपने नाम कर लेते हैं तो फिर उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इस प्रकार की जागरूकता वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो समय पर अपनी वसीयत बनाएँ, अपने नाम पर सेविंग्स रखें और चीज़ों को सभी के सामने उजागर या डिस्क्लोज ना करें।
1: You have been listening to a talk on Senior Citizens Care System, Vulnerability to Abuse, Welfare, Awareness and Strengthening Access to Justice from the webinar organized by the Department of Justice. We slip into a short break.

0: ഡിജിലോക്കർ ആപ്പ്, വെബ്സൈറ്റ് www.daily-law.in യാ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ 14454 സേ പ്രാപ്ത് കി ജാ സക്തി ഹൈ.
1: വി കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ദ ടോക്ക് ഓൺ സീനിയർ സിറ്റിസൻസ് കെയർ സിസ്റ്റം, വൾനറബിലിറ്റി ടു അബ്യൂസ്, വെൽഫെയർ, അവേർനെസ് ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ങ്തനിങ് ആക്സസ് ടു ജസ്റ്റിസ്.
2: हम किस प्रकार से न्याय उन तक पहुंचाएं, तो ये केवल एक ही वर्ग का दायित्व नहीं है, एक ही वर्ग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसमें मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. मैं तीन लेवल्स आपके सामने ज़रूर बात करना चाहूँगी. एक, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सीनियर सिटीजन्स देमसेल्व्स स्वयं की जिम्मेदारी लेना, समय पे जब वो 40s में है या 50s में है या अर्ली 60s में है, तो अपनी सेहत की जिम्मेदारी, समय पे खान पान की जिम्मेदारी, अपनी सेविंग्स, बचत, इन सब का ध्यान रखना. सारे पैसे बच्ची की शादी में या घर बनाने में व्यय नहीं कर देना, ये हम लोगों की रिटायरमेंट काउंसलिंग, ये हमारे मेन मुख्य दायित्व हैं. दूसरा, जो उनके लिए काम करते हैं, प्रोफेशनल्स हुए, हेल्थ वर्कर्स हुए या फाइनेंशियल वर्कर्स हुए, उनके लिए जागरूकता प्रसार करना. जो एजेंसीज उनके लिए काम करती हैं, लॉ मेकिंग, लॉ एनफोर्समेंट, पुलिस हो गई, एनजीओज हो गई, पैरालीगल वॉलंटियर्स होते हैं, उनके प्रति एल्डर अब्यूज़ क्या है, मेंटेनेंस एक्ट क्या है, इस प्रकार की जानकारियाँ उन्हें देना. और जो ग्रास रूट स्तर पे जो एजेंसीज हैं, चाहे वो पंचायत है, चाहे वो RWAs हैं, चाहे वो बाकी एसोसिएशन हैं, अर्बन लोकल बॉडीज हैं, तो वहाँ कोई ना कोई इस प्रकार का सुविधा होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब बदलते परिवेश में केवल ओल्ड एज होम होना हमारे लिए एक जवाब नहीं है. आने वाले समय में डे केयर सेंटर्स, मल्टी सर्विस सेंटर्स या ऐसी जगह, इंटरजेनरेशनल बॉन्डिंग, कुछ स्कूल्स या कॉलेजेस में इस प्रकार का उनके लिए स्थान निर्धारित हो. एक क्रिटिकल भूमिका जो नोडल मंत्रालय है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, उसकी रही है वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के प्रति. और सन 2010 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी, रीजनल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग सेंटर्स ऑन एजिंग. और हमारा इसमें मुख्य रोल जो रहता है वो ये रहता है कि टेक्निकल सपोर्ट और इनपुट्स हम मंत्रालय को प्रोवाइड करते हैं. जो हमारे अंडर हमें स्टेट्स आवंटित किए जाते हैं, उन एजेंसीज को हम ट्रेन करते हैं. और मल्टीपल एजेंसीज, चाहे वो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, पंचायतें हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट है, हर वो विभाग जो वरिष्ठ नागरिकों से डील करता है, हम उन्हें ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, हैंड होल्डिंग और अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं. वाइड स्केल पे कैंपेन्स रन की जाती हैं. हर वर्ष जब 1 अक्टूबर आता है वरिष्ठ नागरिक दिवस, तो उसमें थीम्स डिसाइड की जाती हैं, कभी फाइनेंशियल, कभी लीगल, कभी हेल्थ, और एजिंग विद डिग्निटी, गरिमा मई वृद्धावस्था हमारा मुख्य ध्येय है. सो दिस इज अ ब्रॉड मैंडेट, फ्रॉम ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग टू रिसर्च टू एडवोकेसी टू डेटा बैंक जनरेशन. और उसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है, एंश्योरिंग मॉडल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओल्ड एज होम्स. मंत्रालय के अंडर जितने ओल्ड एज होम्स आते हैं, उनमें किस प्रकार की सुविधाएं हैं, CCTV या जितने वहाँ वर्कर्स काम कर रहे हैं, इनमेट्स हैं, उनकी सुपरविजन और हैंड होल्डिंग भी हमारा एक कार्यक्षेत्र में आता है. जैसे अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, मास अवेयरनेस प्रोग्राम जिसमें हजारों लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे 15 जून को आता है, कृपया आप सभी इसको नोट कर लीजिए. और जितने आपके सर्कल है उसमें ज़रूर इसका ऑब्जर्व होना चाहिए. इसमें हम रैलीज निकालते हैं, रोड शोज करते हैं, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स करते हैं. और मंत्रालय एक बहुत अहम भूमिका जो निर्वहन करते हैं, एक ओथ एडमिनिस्टर की जाती है, एक शपथ ग्रहण किया जाता है यंग जनरेशन के थ्रू कि हम अपने वरिष्ठ नागरिकों का जीवन पर्यंत ध्यान रखेंगे. और वो हमारे नॉर्मली मंत्री जी और बाकी वरिष्ठ लोग इसका संचालन करते हैं. स्वच्छता दिवस, योग दिवस और एजिंग विद डिग्निटी कैंपेन्स, जैसे मैंने कहा, इसके अलावा एक एक दिन के अलग अलग पॉलिसीज पे हम सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स करते हैं. एल्डर्स मंथ होता है अक्टूबर में, पूरा महीना अलग अलग एक्टिविटीज़ को हम इम्प्लीमेंट करते हैं भारत के ऑलमोस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाके. इसमें महिलाओं का कार्यक्रम में हम खासकर तवज्जो देते हैं, जो मातृशक्ति कार्यक्रम है सीनियर सिटीजन्स वुमेन के ऊपर. जम्मू कश्मीर से लेकर लेह लद्दाख और दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और यूथ, नुक्कड़ नाटक, हर प्रकार के जेल्स में. एक और वो जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो अलग अलग जेलों में वरिष्ठ नागरिक 70 साल के, 80 साल के, 90 साल तक के हैं, उनकी किस प्रकार से कंडीशन है, उसके ऊपर भी काम हो रहा है स्टेट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और होम डिपार्टमेंट के साथ मिलकर. और ये एजिंग विद डिग्निटी कैंपेन अब पैन इंडिया कैंपेन है। दिल्ली ने हमारी संस्था अनुग्रह दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी दिल्ली हाई कोर्ट के साथ मिलके भारत का एक एकमात्र यूनिक सेंटर हम रन करते हैं स्वाभिमान परिसर। इस प्रकार की जो जागरूकता प्रसार कार्यक्रम है जो उनके दरवाजे तक उनके पास जाए, दिस इज व्हाट आई वाज मेंशनिंग टू। सो इट बेसिकली फोकसेस लीगल एड काउंसलिंग ट्रेनिंग एंड होलिस्टिक केयर, इंडिया फर्स्ट मॉडल वेलफेयर सेंटर फॉर सीनियर सिटीजन। जैसे मैंने आप सबसे कहा, वी हैव टू वर्क कलेक्टिवली टूवर्ड्स अ सोसाइटी विच इज an age friendly India and age friendly society, and especially I would say youth has a very important responsibility, not only government but all the stakeholders in this.
1: You had been listening to a talk on senior citizens, care system, vulnerability to abuse, welfare, awareness and strengthening access to justice by Dr. Abha Chaudhary, founder, secretary and chairperson, Anugraha RRTC. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
3: ഇതുവരെ കേട്ടത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് സ്പോൺസേഡ് പരിപാടി.

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने संत मीराबाई का ये भक्ति पद सुना। संगीत दिया था हृदयनाथ मंगेशकर ने।

0: बहादुर शाह जफर का कलाम अभी आपने सुना। गायिका थी रूना लैला और संगीत पंडित गुलाम कादिर का था।
1: वो कॉमिक क्रिएटर है।
2: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
2: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
2: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
1: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: और आइए अब सुनते हैं यूसुफ आजाद कव्वाल और उनकी हमनवा की गाई ये कव्वाली। इसे तविश महमूद ने लिखा और धुन बनाई निसार ने।

कार्यक्रम में अब सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में एक गजल, शायर सबा अफगानी और संगीत इकबाल का।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं किशोरी अमोनकर की आवाज में उनकी गाई ये ठुमरी भैरवी।

0: किशोरी अमोनकर की आवाज में अभी आपने उनकी गाई ये ठुमरी भैरवी सुनी।
1: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक है लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जानी मानी क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: हाय हाय,
0: शोभा गुर्टू की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं ये कजरी।

0: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
1: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध

0: अभी आप सुन रहे थे शंकर, शंभू और खव्वाल की आवाजों में हजरत अमीर खुसरो का ये कलाम। ये एक सूफी कव्वाली थी जो हजरत अमीर खुसरो ने अपने मुर्शीद यानी अपने गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया के लिए लिखी, और इस कव्वाली में वे अपने पीर, अपने संत को पाने की खुशी और उनके प्रेम के रंग का वर्णन कर रहे थे। संगीत दिया था मुरली मनोहर स्वरूप ने।
1: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
2: क्यों?
1: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियाँ आती थी विविध भारती में।
3: चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है,
1: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
3: पल पल दिल के
1: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
2: हम इंतजार करेंगे।
1: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
0: रंग तरंग कार्यक्रम में अब सुनिए जयदेव के संगीत निर्देशन में रामानंद शर्मा का लिखा ये भक्ति पद। इसे गाया है शर्मा बंधु ने।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह। लता मंगेशकर के स्वर में ये है पद्मा सचदेव का लिखा गीत, संगीत जयदेव का है फिल्म प्रेम पर्वत।

0: पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
0: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है।
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
0: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेएस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
1: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मशाल फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। जावेद अख्तर के बोल थे, हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत था। इजाजत फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज, गुलजार के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं है।
0: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। उमरा जान फिल्म की गजल सुनिए तलत अजीज की आवाज में, शहर यार के बोल, खयाम का संगीत।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ

नाम फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। मनहर उदास मोहम्मद अजीज की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। ये शराबी फिल्म का गाना है।

शराबी फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, ना हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। तो दोस्तों, अब तक तो आपको प्रोग्राम का स्वरूप पता ही चल चुका होगा कि इसमें हम एक इबारत टेक्स्ट लिखते हैं फेसबुक पेज पर, विविध भारती के फेसबुक पेज पर, और हमारे बहुत सारे श्रोता या कहें कि अनगिनत श्रोता टिप्पणी लिखते हैं और वो टिप्पणी इस प्रोग्राम में हम शामिल करते हैं। तो चलिए आज की इबारत हम पढ़कर सुना देते हैं, जो अभी तक विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े नहीं है उनके लिए खास तौर से। और इस इबारत में से आपको शब्द चुनने हैं और गाने चुनने हैं। अब ये नहीं कि बात विदाई की पकड़ ली और उसी पर बातें लिखे, इसमें बहुत सारे शब्द हैं, उन शब्दों के भावों को भी पकड़िएगा। तो अब हम इबारत पढ़ के सुना रहे हैं। वो भीगी दोपहर थी, रिमझिम फुहार पड़ रही थी, आंगन में रखी गुड़िया को देखकर अम्मा की आंखें भर आई, उन्हें अपनी बेटी की याद आ गई जिसकी विदाई को कई बरस बीत चुके थे। अब इसमें एक शब्द है बरस, इस पर कौन से गाने होंगे बताइए। उसने अम्मा से विदाई के समय कहा था, मेरी गुड़िया रख तो संभाल के, मोरा नहीं खेलन का चावरे बाबुल। और अब ये गाने की लाइन मैंने लिख दी है क्योंकि ये गाना आप कभी कभार सुनते हैं। तो क्या आपने इस गाने को कभी पहले सुना था? फिल्म का नाम जरा बताइए। और अब आगे इबारत आगे पढ़ रही हूँ। फिर उसने कहा था, अम्मा मोरे बाबा को भेजो रे के सावन आया, फिर घर सूना हो गया, कभी इसी घर में भाई बहन की हंसी गूंजती थी, छोटी छोटी बातों पर रूठना मनाना चलता रहता था, आज पूरा परिवार साथ होते हुए भी घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। तभी बेटी का फोन आया, उसकी हंसी सुनते ही अम्मा का चेहरा खिल उठा, सावन की फुहारों के साथ जैसे घर में फिर वही पुरानी रौनक लौट आई। सबने महसूस किया कि रिश्तों में प्यार बना रहे तो हर विदाई के बाद मिलन खुशियों से भर देता है। अब यहाँ पर बताइए, रिश्ता शब्द आपके पास आ रहा है और याद आ रही है, घर है, प्यार है, विदाई है, तो हमने आपको हिंट दे दिया, मतलब यूं कि हमारे श्रोता कहते हैं कि प्रश्न पत्र लीक हो गया। तो प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ, बल्कि ये आपको हम हिंट दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला। तो आप बताइए कि कौन से वो शब्द हैं जिनसे आपको गाने सूझ रहे हैं और कौन से वो भाव हैं जिनसे आपके भीतर जज्बात पैदा हो रहे हैं, तो वो जज्बात भी साझा करते चलिए और साथ में हमारी पहेलियों के जवाब भी। अब भला बताइए कि कौन है ऐसा जिसने विदाई की पीड़ा को न सहा हो, तो अपने अनुभव साझा कीजिए। आपने विदाई कि आप विदा हुए कहीं अपने घर से, विदाई सिर्फ बेटी की नहीं होती है, ससुराल जाते समय विदाई वो भी होती है जब आप कहीं पढ़ाई के लिए देश

परक फिल्म का गाना था। गीतकार संगीतकार शैलेंद्र और सलील चौधरी। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया, त्वरित जवाब दिया, लेकिन बहुत सारे श्रोताओं ने कोई जवाब नहीं दिया है। और एक श्रोता नहीं बल्कि अनेक श्रोता लिख रहे हैं, अब के बरस भेज मतलब बंदिनी फिल्म का गाना। तो इतने सारे श्रोताओं ने यह गाना लिखा है, तो हमें लगता है वही गाना अब बजाया जाए, लेकिन उससे पहले कुछ टिप्पणियां भी पढ़कर सुना दी जाए। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत बहुत दिल को छूने वाली है, पर पढ़ के मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया है, समझ में नहीं आ रहा कि अपने बचपन की यादें बताऊं, बेटी की यादें साझा करूं। खैर, हमारा बचपन तो बहुत संघर्षमय रहा। माँ को तो कभी फुर्सत ही नहीं मिलती थी खेती बाड़ी के काम से, पर जब भी कभी नागपंचमी या राखी आती तो बाबा फोन करके पूछते रहते थे, आज भी पूछते हैं, बाई तू कदी येत, मतलब तुम कब आ रही हो। और बहुत सारे श्रोता विदाई पर कुछ बातें लिख रहे हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि विदाई सिर्फ बेटी की विदाई नहीं होती है, या जो लड़कियां हैं औरतें हैं सिर्फ आपकी विदाई नहीं होती, बल्कि आप अपने बेटे को भी विदा करते हैं, आप अपनी बेटी को विदा करते हैं जब वो पढ़ने के लिए घर छोड़ते हैं। तो वो बातें भी साझा कीजिए, आप खुद हॉस्टल में रहे होंगे, वो यादें भी साझा कीजिए। और इसमें हम मिली जुली टिप्पणियां शामिल करते हैं, मिले जुले विषय को रखते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि उस समय बरखा की कुछ बूंदे उन आंखों से भी छलक जाएंगी जब एक माँ अपनी बेटी की विदाई के समय को याद करते हुए उसकी यादों की गुड़िया के खिलौने को बड़े प्यार से निहार रही होगी। और एक श्रोता ने लिखा है, अब के बरस तुझे धरती की रानी, मतलब बरस शब्द से इन्होंने ये गाना चुना है। तो शब्दों को पढ़ते रहिए और गाने चुनते रहिए। अब अगला गाना सुनते हैं बंदिनी फिल्म का। बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने को लिखा है। अब इसके बाद बंदिनी फिल्म के गाने के बाद कौन सा वाला गाना आना चाहिए वो भी जरा आप चुनिए, बताइए हीरोइन कौन है इसमें।

बंदरी फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज, शैलेंद्र के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत और हीरोइन होती है फिल्म में नूतन। सभी श्रोताओं ने ये भी जवाब सही दिया है। और एक श्रोता ने लिखा है कि ये गजब, आपने तो शुरुआत के फिल्म परख के गाने से उस सजना बरखा बाहर आई। बिल्कुल, ये तो सोचा ही नहीं था। लेकिन क्यों नहीं सोचा था, इसमें फुहार शब्द कहीं आता है ना, और इबारत में है। इबारत में जो कुछ लिखा है उसमें कोई न कोई ऐसा शब्द होगा जिसमें आपको गाना जरूर याद आएगा। हालांकि अब एक गाना हम ऐसा सुनवाने वाले हैं जो शायद आपने बहुत कम सुना होगा, और उस गाने से जुड़ी हुई कोई खास बात होगी, कोई खास याद होगी, तो जरूर साझा कीजिएगा। जरा इंतजार कीजिए, हम पहले टिप्पणी आपकी पढ़कर सुना दें। एक श्रोता ने लिखा है कि जब हमने पहली जॉब जहां थी उसी नगर से दूसरी जगह जाना हुआ, तब हमारे मकान मालिक और उनकी पत्नी ने हमें अपने बच्चों को विदाई देते हुए ऐसे रोते हुए ढेरों प्यार बरसाते विदाई दी थी। क्या बात है भाई। जब दरअसल अभी भी छोटे शहरों में जब बच्चे घर से पढ़ने लिखने के लिए बाहर जाते हैं तो अड़ोसी पड़ोसी शामिल हो जाते हैं, या फिर जब बेटी अपने मायके आती है तो अड़ोसी पड़ोसी छतों से झांकते हैं, और जो जिनसे बहुत घनिष्ठ रिश्ता होता है वो मिलने भी तुरंत आ जाते हैं कि बेटी अपने ससुराल से मायके आई है। ऐसा ही कुछ समा होता है अड़ोस पड़ोस के साथ। हालांकि महानगरों में ये चीजें कम होती हैं क्योंकि महानगरीय व्यस्तता आड़े आ जाती है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि सावन का महीना बड़ा अच्छा माना जाता है, खासतौर से बहन बेटियों की यादें ताजा कर देता है। ये महीना एक तरह से प्रेम उमंग का महीना होता है। हमें वो दिन याद आते रहते हैं जब बहनें इस महीने में झूला डालकर झूला झूलती थीं। हम भी उनके साथ झूले पर झूलते थे। उधर रक्षाबंधन की भी

याद दिला देता है। और सावन मास की तीज का त्योहार तो एक बहनों का खास दिन हुआ करता था। मोहल्ले की सब बहनें मिलजुल कर इस दिन को खास तौर से एक पर्व के रूप में आज भी मनाया करती हैं। जब बहनें ससुराल जाती हैं तो हमारी आंखें नम हो जाती हैं। ससुराल में चाहे उन्हें कितना भी सुख हो पर वो आंगन याद आता है जब साथ साथ खेला करते थे। पुराने बचपन की याद ताजा हो जाती है और वो गुड़िये वाले दिन कैसे नहीं याद आते हैं कि गुड़िया का एक संसार होता था, गुड़िया गुड्डे का। तो जब एक बेटी विदा होती है तो अपने माँ से क्या कहती है कि मेरी गुड़िया संभाल के रख दो, अब खेलने का समय नहीं रहा। लेकिन मन में ये आस जरूर होती है कि माँ गुड़िया संभाल के रखेंगी और जब मैं लौट कर आऊंगी तो इन्हें खेलूंगी। कुछ यही बात ये गाना कहता है, जरा सुनिए। फिल्म है तुम लौट आओ। अगर आपको पता है तो किसकी आवाज में ये गाना है जरूर बताइए। इस गाने से जुड़ी कोई खास बात हो, कोई खास याद हो तो साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर।

तुम लौट आओ फिल्म का ये गीत था, सरला भिड़े और शोभा जोशी के स्वर थे। अभी तक हमारे श्रोता नहीं बता पाए किनकी आवाजें थी, हमने आपको बता दिया। चूंकि ये गाना आपको बहुत कम सुनने को मिलता है इसलिए हमने जानकारी दे दी। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज से 30 बरस पहले बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के लिए अपने दो बच्चों को छोड़ने गई थी, वो याद आ गया आंख में आंसू के साथ। शायद लेडीज समझ पाएंगी कि बच्चों के जन्म के समय कैसा दर्द होता है। बिल्कुल वही दर्द मैंने उस दिन महसूस किया जब बच्चों को छोड़ा था। क्या बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि विदा दुनिया के सबसे मार्मिक शब्दों में से एक है। एक विदा ऐसी भी होती है कि अब इस जन्म में उससे मिलने की आस खत्म हो जाती है। ऐसी विदा जीवन भर दुख दे जाती है। बेटियों की विदाई में तो सुखम दुखम का क्रम चलता रहता है। विदा कैसी भी हो, जाने वाले कभी पूरी तरह से नहीं जा पाते। वे रह जाते हैं कोई पुरानी तस्वीर में, कोई अधूरी बातों में और उन जगहों में जहां हमने साथ मिलकर एक वक्त गुजारा था। एक श्रोता ने लिखा है कि परिवार में माता पिता भाई बहन का रिश्ता एक मजबूत डोर से बंधा होता है। रूठना मनाना चलता रहता है। बेटी की विदाई एक सुनापन सा एहसास देता है। बेटी के फोन पर हंसी सुनकर घर में खुशी और रौनक फिर से सबके मन में खिल उठती है। बस इन्हीं शब्दों से गाना चुनिए आप। बेटी शब्द इसमें आया है, विदाई तो है ही, रूठना मनाना है, हंसी है और फोन भी है। तो फोन शब्द से कौन सा गाना आपको याद आ रहा है, हम सुनवाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप भी कुछ गाने सुझाएं। फिलहाल चोरी चोरी फिल्म का ये गाना सुनिए। रचना किसकी है आप बता सकते हैं और संगीतकार का नाम भी बताइए।

बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, बहुत ही भावुक गाना सुनाया, और इसके पहले जो गाना सुनवाया था बिछड़ी मेरी सहेलियां तुम लौट आओ, इसके लिए भी बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, और ज्यादातर श्रोताओं ने लिखा है कि ये गाना हमने पहली बार सुना, ये गाना हमने कम सुना, और बहुत ही भावुक कर देने वाला ये गाना था। सचमुच कई बार हम गीत सुनकर ही जज्बाती हो जाते हैं। और एक श्रोता ने लिखा भी है कि आज मुझे 35 साल पुरानी बात याद आ गई, जब हम छत्तीसगढ़ से ट्रांसफर होकर आ रहे थे तो जो मकान

मालकिन थी जिसे वहां दाई कहते थे, वो इतना रोई और एक बेटी की तरह मुझे विदा की। रास्ते के लिए खाना भी रखा और साड़ी भी दी, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। एक श्रोता ने लिखा है कि आज सावन के गीतों को सुनने का आनंद मिलेगा। सावन के दिनों में अपनों से बिछड़ने का दुख होता है, पर याद कर घर जाकर मिलने की आस भी रहती है। एक श्रोता ने लिखा है कि जब वो खुद विदा की जाती है और बेटी होगी तो उसे शादी करके विदा किया जाता है, वो मंजर बहुत भावहीना होता है। अगर बेटी या बेटा पढ़ने या नौकरी के लिए विदा होते हैं तो एक एहसास होता है लौट के फिर आएंगे। मेरी बेटी पुणे से कोंकण नौकरी के लिए गई थी, तब पहली बार उसके पापा की आंखों में आंसू देखे थे। सचमुच विदा किसी भी तरह का हो, विदा दुख देता है, आंखों में आंसू ला देता है। बहरहाल अब चलिए जरा बरखा की बूंदों में भीगा जाए। चिराग फिल्म का गाना हम आपको सुनवा रहे हैं और इसमें पहेली है। पहेली ये कि आपको बूझना है कौन है हीरो हीरोइन और साथ में गीतकार संगीतकार। हीरो हीरोइन का नाम पूछिए और गीतकार संगीतकार का नाम पूछिए। फिल्म चिराग। और भी कोई गाना याद आ रहा है इन शब्दों पर इबारत वाले, वो भी आप लिखते चलिए। अगर बहुत सारी फरमाइश आ जाएगी कि इन यही गीत है जो इबारत वाले शब्द है, तो वो गाना हम आपको सुनवाएंगे।

इसके बाद बताइए फोन वाला गाना कौन सा याद आ रहा है आपको, जिसमें जिस गाने में फोन शब्द हो। बेटी जब जाती है ससुराल तो फोन करती है ना, टेलीफोन, तो बताइए वो गाना।

0: चिराग फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें थी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था। हमने पूछा था हीरो हीरोइन का नाम, सभी श्रोताओं ने जवाब सही दिया है, आशा पारिख और सुनील दत्त। एक श्रोता ने लिखा है कि विदाई की बात आई तो मुझे वो दिन याद आते हैं जब माता पिता पढ़ाई करने या जॉब करने अपने बच्चों को स्टेशन छोड़ने जाते हैं, मम्मियों के आंसू नहीं रुकते, जिसकी मैं स्वयं साक्षी हूं। भोपाल से हम सफर एक्सप्रेस पुणे मुंबई चलती है, उन माओं में मैं भी शामिल थी जिनके आंसू सबको जानते हुए रुक नहीं रहे थे। एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो सावन की बात है, ऐसा लगता है कि ममता जी की आंखों में भी सावन होगा। तो एक श्रोता ने लिखा है कि आज आपने रुला दिया वो गाने सुनाकर। मेरे ख्याल से इस गाने की बात है, बिछड़ी मोरी सहेलियां और अम्मा मेरे बाबुल को भेजोरी, ये ऐसे गाने हैं जिन्हें सुनकर किसकी आंखें नम नहीं होती हैं। तो इन्होंने आगे लिखा है कि आज न मम्मी है न पापा है, एक भाई है हमसे बहुत प्यार करता है लेकिन वो अपने परिवार के लिए मजबूर है, इसलिए फोन पर ही बात हो जाती है। आज मन बहुत भावुक हो रहा है। एक श्रोता ने लिखा है कि परख फिल्म का जो गाना आपने सुनवाया, बेहद लोकप्रिय गीत, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना और बरखा से जुड़ा हुआ, बारिश की रस भरी फुहार, किस तरह से पेड़ पौधों के साथ साथ हमारे दिलों में भी प्रेम रस का संचार करता है ये गाना, उसी का वर्णन है इस गीत में। सलिल चौधरी के शास्त्रीय लोक और पहाड़ी धुनों को मिलाकर बनाए हुए गाने इतने ज्यादा मीठे लगते हैं सुनने में कि जब भी हम इन्हें सुने तो कितने भी तनाव में हो मन प्रसन्न हो जाता है। और एक श्रोता ने और लिखा है कि हमें उम्मीद नहीं थी कि आप ये गाना सुनवा देंगे। कई बार उम्मीद के विपरीत गाना सुनवाने में भी बड़ा आनंद आता है, लेकिन अब जो गाना सुनवाएंगे वो हम आपकी उम्मीद के मुताबिक ही सुनवाएंगे, क्योंकि बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने का जिक्र किया है। हमने पूछा था कि कौन सा गाना फोन पर याद आ रहा है, टेलीफोन पर, कि जब बेटी विदा होती है, जो अम्मा है इस इबारत में कि अम्मा कहती हैं कि फोन आया बेटी का और उनके सामने यादें साझा हो गई, तो फोन वाले गाने हमने आपसे पूछे थे। अभी तक तो सिर्फ इसी गाने की फरमाइश आई है। फिल्म का नाम बता सकते हैं तो बताइए, जरा जल्द बताइएगा फिल्म का नाम।
1: हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ।
0: किसकी है आवाज ये भी बताइए।

मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। आप बताइए अपने अनुभव कि टेलीफोन जब करते हैं तो कितनी देर बतियाते हैं और टेलीफोन से जुड़ी हुई कौन सी याद है, कोई खास बात है तो वो आप साझा कर सकते हैं। हमने पूछा था फिल्म का नाम पतंगा, सभी श्रोताओं ने बहुत जल्द जवाब दिया और शमशाद बेगम और चितलकर की आवाजें थी, ये भी सही बताया हमारे श्रोताओं ने। एक श्रोता लिख रहे हैं कि बात 1974 की होगी, जब हम नौकरी की खोज में जम्मू गए थे, जहां एक मित्र मिल गया जिसने महीने भर अपने घर रखा और नौकरी न मिलने पर वो हमें छोड़ने जम्मू रेलवे स्टेशन पर आया था। ट्रेन चढ़ने पर भी मैं रो रहा था और वो भी रो रहा था। कुछ वर्षों तक बातचीत पत्रों से होती रही लेकिन कुछ समय बाद उसके खत नहीं आए। एक श्रोता ने लिखा है कि आज भी जब सावन की पहली फुहार पड़ती है तो उसकी विदाई का दिन याद आ जाता है। भीगी आंखों से उसे विदा किया था और मुस्कुरा कर कहा था खुश रहना। उस दिन समझ आया कि माँ बाप की दुआओं में कितना साहस छिपा होता है। बेटी चली जाती है लेकिन उसकी हंसी, उसकी बातें और उसकी यादें हमेशा घर के आंगन में गूंजती रहती है। अब एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत पुरानी यादों में ले जाकर आंखों में आंसू ले आए। आज माता पिता बहन इस दुनिया में नहीं है लेकिन यादें ताजा हो गईं। उस घर की जो जन्मभूमि रही, जहां छोटा सा परिवार हंसी खुशी सपनों के साथ रहता था। सावन माह कुछ ज्यादा ही याद आता है। ऐसा कोई सावन नहीं गुजरा जब माँ के पास नहीं गई। छुट्टियां नहीं मिलने पर भी एक ही दिन में आना जाना कर लेती थी। अब बरसों से सावन उदासी लेकर आता है, बस यादें ही शेष हैं। यादों में विदाई सबके बसा हुआ। सारे श्रोता आज विदाई की बात लिख रहे हैं और अपनी अपनी यादें खंगाल रहे हैं। जरा अब एक और गाना सुनिए इसी तरह और साझा कीजिए अपनी यादें और साथ में हमें ये भी बताइए कि किसकी है ये आवाज। हीरो हीरोइन का नाम तो आपको पता ही होगा। फिल्म हम आपके हैं कौन।

0: हम आपके हैं कौन फिल्म का ये गाना था, सभी श्रोताओं ने बूझा, शारदा सिन्हा की ये आवाज थी और कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है। हालांकि इसमें हीरो हीरोइन होते माधुरी दीक्षित, सलमान खान के भी बताया है श्रोताओं ने। और विदाई से जुड़ी हुई बहुत सारी टिप्पणियां हमारे श्रोताओं की आ रही हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज का टॉपिक बहुत ही भावुक कर देने वाला है, अभी मेरी बिटिया की विदाई का समय तो दूर है पर आज ही अपनी विदाई का वक्त याद कर आंखों में आंसू जरूर आ जाते हैं। और इन्होंने बाबुल मोरा नैहर छूटा जाए ये गाना भी लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि इबारत, आज की इबारत हर बेटी के मन में बसे सावन की साझा स्मृति है। सावन केवल पेड़ों पर नहीं उतरता, वो यादों की शाखों पर भी झूलता है। भीगी दोपहर, आंगन में रखी गुड़िया और अम्मा की नम आंखें मिलकर उस रिक्तता को स्वर देती हैं, जिससे हर बेटी की विदाई घर की चौखट पर छोड़ जाती है। वो गुड़िया महज एक खिलौना नहीं, बचपन की आखिरी अमानत है। और सावन आया केवल ऋतु का संदेश नहीं, बल्कि उस बेटी की मौन पुकार है जो मायके की दहलीज, अम्मा की गोद और बाबुल के स्नेह को एक बार फिर जी लेना चाहती है। पर माँ का मन वहीं ठहरा रहता है जहाँ विदा होती बेटी ने आखिरी बार मुड़कर देखा था। चलिए, अब हमने आपसे पूछा था भाई बहन वाला कौन सा गाना आपको याद आया, तो कहीं ये गाना तो नहीं है? सुनिए और बताइए फिल्म का नाम।
1: मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया।
0: हीरो हीरोइन का नाम भी आपको पूछना है।

इस गाने को सुनते हुए बहुत सारे श्रोताओं को भाई बहन वाले गाने याद आए और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है किसी महीने में रक्षाबंधन का त्यौहार आता है तो भाई बहन वाले गाने बहुत याद आते हैं। और शारदा सिन्हा के लिए लिखा है कि शारदा सिन्हा बिहार की कोकिला कही जाती थी। और एक श्रोता ने और लिखा है भाई बहन का त्यौहार आने वाला है, रक्षाबंधन का गीत, बहना ने भाई की कलाई पर प्यार बांधा है। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, फूलों का, तारों का सबका कहना है, और बाबुल की दुआएं लेती जा, ये गाना लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि शायद वो सावन भी आए जो बहन सा रंग ना लाए, बहन पराए देश बसी हो अगर वो तुम तक पहुंच न पाए, ये कविता की पंक्तियां लिखी हैं इन्होंने। और एक श्रोता ने लिखा है कि भाई बहन पर फिल्म छोटी बहन का गाना याद आ रहा है, वो बहुत अच्छा लगता है। और गाने सुनते जा रहे हैं, एक श्रोता ने लिखा है गाने सुनते जा रहे हैं, आंखें साफ हो रही हैं, भावुक हो रहे हैं, बस यही चल रहा है आज के प्रोग्राम के साथ। और एक श्रोता ने लिखा है सच्चा झूठा फिल्म का ये गाना था, और बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दिया है, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, मुमताज इस फिल्म में हीरो हीरोइन होते हैं। और टेलीफोन से जुड़ी हुई हमने बात पूछी थी कि टेलीफोन वाला जो गाना सुनवाया तो आप अपनी यादें साझा कीजिए, तो श्रोताओं ने लिखा है कि अगर फोन पर पिता पुत्र बात कर रहे हैं तो केवल कुछ मिनट मतलब की बात होती है, अगर माँ बेटी

की बातें हो तो समय असीमित होता है, यूं समझ लीजिए घंटों घंटों कुछ मिनट के समान होते हैं। एक श्रोता ने बिल्कुल सही बात है कि जब माँ बेटी बतियाने लगती हैं तो भूल जाती हैं कि हम टेलीफोन पर बतिया रहे हैं, लेकिन आजकल जो दो दोस्त बात करते हैं तो वो भी अनलिमिटेड बातें होती हैं, पता नहीं चलता समय का। एक श्रोता ने लिखा है कि हम आठवीं कक्षा में पढ़ने के लिए भेजा था अपने बड़े बेटे को, तो पति पत्नी दोनों को कई दिनों तक याद आती थी। सभी समझते थे कि पढ़ाई करने गया है, लेकिन परिवार से अलग होने का बिछोह ज्यादा होता था। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमने 2002 में लैंडलाइन फोन के लिए आवेदन किया था, बहुत इंतजार के बाद हमें फोन मिला था। एक श्रोता ने लिखा है कि जब मैं अनाउंसर बनी थी, इलाहाबाद से रीवा जा रही थी, 3 जुलाई 1987 को सुबह 6 बजे की बस पर बैठी थी और 9:30 पर रीवा पहुंची थी। बस की खिड़की के बाहर मुंह करके बैठी रही, पानी बरसता रहा और घर छोड़कर मैं रोती रही कि कहीं हमारे पापा हमारी रोती हुई शक्ल ना देख लें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब जरा रूठने मनाने की बात भी इबारत में हुई थी, तो ये गाना सुनिए और बताइए कौन है हीरोइन और साथ में गीतकार संगीतकार का नाम भी बूझिए। फिल्म का नाम सीमा।

सीमा फिल्म का गाना था लता मंगेशकर की आवाज थी, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत था और हमने पूछा था कौन है कलाकार, सभी श्रोताओं ने बताया नूतन और कुछ श्रोताओं की टिप्पणियां हम शामिल कर दें। उससे पहले जो अब हम गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं उसके बारे में एक सवाल पूछ लें। दाता फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, उसमें आपको पूछना है कौन है इस फिल्म में कलाकार, हीरो हीरोइन का नाम आपको पूछना है। और आपको बता दें एक श्रोता ने लिखा है सच्चा झूठा फिल्म का जो गाना आपने सुनवाया ये अमर रहेगा, क्योंकि जैसा किशोर दा ने गाया है ऐसा कोई गा नहीं सकता, उन्होंने जो भाव से गाया है वो भाव अमर है। एक श्रोता ने लिखा है कि विदाई शादी के बाद तो विदाई होती है, विदाई भाई बहन से, बिछड़ने का वो बचपन जहां हम मिलकर खेले झगड़े किए फिर मिल गए, जब जब मायके जाती हूं तो आते समय आंखें अपने आप भर आती हैं, सालों बीत जाने के बाद भी एक दूसरे से बिछड़ने का दुख आज भी हमें सताता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी बेटी जब अपने ससुराल से पीहर मेरे घर आती है और कुछ दिन रहने के बाद जब उसे वापस ससुराल जाना होता है तो ऐसा लगता है जैसे कि घर पूरा सूना हो गया है। चलिए सुनते हैं ये गाना फिल्म दाता।

दाता फिल्म का ये गाना सुनते हुए बहुत सारे श्रोता फिर भावुक हो गए और बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आने लगी। एक श्रोता ने अभी भी लिखा कि मैंने अपनी विदाई की बातें तो बताई ही नहीं। मेरी विदाई पर सारे घर वाले हम लोगों को ट्रेन पर छोड़ने आए थे। ट्रेन चल रही थी और वो लोग भी रोते रोते चलते रहे। आज कोई भी न छोड़ने वाले है न रोने वाला है। अब दरअसल व्यस्तताएं इतनी बढ़ गई है लोगों के घरों में कि अब वो जमाना नहीं रहा कि एक कोई जाता है परिवार से और 10 लोग परिवार के छोड़ने आते हैं। बहरहाल अब प्रोग्राम का सफर हो रहा है खत्म। प्रोग्राम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: मुझको

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ हैं आरती श्रीवास्तव। तो आरती भी तुम्हें मेरा प्यार भरा नमस्कार।
2: मंजरी आपको और साथ ही सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: और आरती बताओ कैसी हो, कैसा लग रहा है आज का दिन तुम्हें, कैसा लग रहा है?
2: बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बीच में जब धूप खिल जाती है ना तो मौसम एकदम खुशगवार हो जाता है।
1: और खिली धूप में जब बारिश के भीगे हुए पत्ते होते हैं ना तो बिल्कुल चमकदार लगते हैं, धूले साफ लगते हैं, तो मन बड़ा वैसे भी आनंदित हो जाता है। और बारिश लगातार होती है तो लगता है, हम लोग प्रार्थना करते हैं कि भाई धूप थोड़ी निकले, क्योंकि कपड़े वपड़े सूखे, जो सीलन है वो सब गायब हो, तो बड़ा अच्छा लगता है। और देखो आज हम लोग बात भी करने वाले हैं, विषय बता देते हैं पहले कि उपयोगी टिप्स में हम बात करने वाले हैं बारिश में घर की सफाई।
2: तो आप लोग किस तरीके से बारिश में अपने घर की सफाई करते हैं या क्या आप उपाय अपनाते हैं अपने घर को साफ रखने के, और जो थोड़ी सी सीलन वाली एक महक सी आ जाती है उसको दूर करने का आप क्या उपाय करते हैं, तो आप हमें लिखकर भेजिए।
1: और देखो बहुत सारे हमारे साथियों ने संदेश भी भेज रखे हैं इस पर। और मुझे कुछ कहना है जो आज हम सेगमेंट लेते हैं उसमें, वो चिट्ठियों का जमाना।
2: तो भी वो चिट्ठियों का जमाना जो था ना वो कभी पुराना हो ही नहीं सकता।
1: बिल्कुल, उनकी यादें बसी हुई हैं,
2: मन में बसी हुई हैं। और हम चाहेंगे कि जो भी आप भेजते थे चिट्ठियां और आपके पास चिट्ठियां आती थी तो उसका जो आपका अनुभव है वो आप अपना अनुभव जो है वो हमें लिखकर भेजिए, हमारे साथ साझा करिए उन यादों को, तो हम एक बार फिर से उन पलों को जी लेंगे।
1: बिल्कुल जी लेंगे। और आज और क्या हम लेकर के आए हैं?
2: आज हम लेकर आए हैं कहानी पद्मश्री के अंतर्गत कोलक्कयिल देवी की अम्मा जो पर्यावरणविद है, और साथ ही हम लेकर आए हैं लुप्त होती पारंपरिक कलाओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो आप आपके पास जो भी इनके बारे में जानकारी है आप हमें लिखकर भेजिए, और आप किस तरह से इनसे जुड़े हुए हैं अगर ऐसा भी कुछ है तो आप हमें लिखकर भेज सकते हैं।
1: तो चलिए सबसे पहले सुन लेते हैं हम लोग गीत, फिर आगे करेंगे बातें।
2: बिल्कुल।

0: कदाओं के साथ फिरते कदम
1: चलते रे इश्क भी बढ़ जाते
0: पूरे दबंग अंदाज में और दोस्तों की महफिल सजी हो तो
2: ओ केटिको बर्फ बदन है।
0: लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन यादगार गीतों की धड़कनों को नृत्य की परिभाषा किसने दी?
3: मेरा काम यह है कि जो मेरे मास्टर कोरियोग्राफी मेरे ऊपर कर रहे हैं उसे मैंने 200% निखार के उनको दिखाना है। तो मेरा जब एक्टर मुझसे सीखेगा
0: जी,
3: वो एक्टर को पता होना चाहिए कि मैंने इतना करना है।
0: तो मिलेंगे बॉलीवुड की जानी मानी कोरियोग्राफर शबीना खान से, जानेंगे उनके सफर की अनसुनी कहानियाँ, पर्दे के पीछे के दिलचस्प किस्से और उन गीतों के बनने की दास्तान जिन पर झूम उठा पूरा हिंदुस्तान।
4: निकला वो गड्डी लेके
0: 8 अगस्त 2026 को शाम 4 बजे बॉम्बे टॉकीज में सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन पर।
5: हाँ तो मंजरी, अब हम बात करते हैं अपने जो नया सेगमेंट जो हम ये लेते हैं कहानी पद्मश्री की। तो इसमें हम आज बात करेंगे कोलक कैल देव की अम्मा जो कि पर्यावरणविद हैं, यानी पर्यावरण की रक्षा कह समझ लीजिए। तो देव की अम्मा के दादाजी जो थे वो एक वैद्य थे। उनका देव की अम्मा के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव था और उन्हीं की वजह से देव की अम्मा में पर्यावरण के प्रति प्रेम जागृत हुआ। उनका विवाह हुआ गोपाल कृष्ण पिल्लई से जो एक अंग्रेजी के शिक्षक थे। उनके परिवार में सभी महिलाओं को कृषि कार्य करना अनिवार्य था।
6: और देव की अम्मा 1980 तक अपनी सास के साथ धान की खेती में सहयोग करती रहीं। जब उनके पैर में चोट लग गई और उन्हें चलने फिरने से मना कर दिया गया, उसके 3 साल बाद उन्होंने अपने घर के पीछे एक पौधा लगाया और इस तरह उनकी बागवानी की शुरुआत हुई।
5: बिल्कुल। और केरल के अलप्पुझा जिले

0: उनके घर के आंगन में उन्होंने थोड़े ही समय में एक हरा भरा जंगल उगा लिया था। देव की अम्मा याद करते हुए कहती हैं कि मैं पहले धान की खेती बड़े चाव से करती थी, लेकिन दुर्घटना के बाद मैं लगभग 3 साल तक बिस्तर पर पड़ी रही और मुझे धान की खेती छोड़नी पड़ी, लेकिन इससे मुझे एक और महत्वपूर्ण काम करने का मौका मिला।
1: परिवार के सदस्यों की मदद से मैंने 35 साल पहले पौधे लगाना शुरू किया था। तब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये जगह जो है वो जंगल बन जाएगी। उनके पति और परिवार ने उनका मनोबल बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। उनके पति हर दिन उनके लिए बीज और पौधे लाते थे। आज भी उनके परिवार के सदस्य, रिश्तेदार और दोस्त उन्हें नियमित रूप से पौधे और बीज भेंट करते हैं।
0: बहुत बहुत ही अच्छी बात है। एक इतनी अच्छी चीज की शुरुआत करी है ना कि बीज और पौधे देना मतलब कि आप पूरी प्रकृति को सुरक्षा दे रहे हैं। और देवकी अम्मा कहती हैं कि वन संरक्षण में मुझे अपने बच्चों, पोते पोतियों और उनके बच्चों से भरपूर सहयोग मिलता है और वो इसमें बड़ा योगदान देते हैं और वन की सर्वोत्तम तरीके से रक्षा करना चाहते हैं। उनकी पोते पोती छुट्टियों के दौरान उनसे मिलने आते हैं और उनके इस नेक काम में पूरे उत्साह से उनकी मदद करते हैं। उनसे प्रेरित होकर उनकी एक पोती ने पढ़ाई के लिए वनस्पति विज्ञान को चुना ताकि देवकी अम्मा के इस नेक काम में वो योगदान दे सकें।
1: और उनकी बेटी प्रोफेसर डी थैंक मड़ी, जो तिरुवनंतपुरम इंजीनियरिंग कॉलेज में पर्यावरण विभाग में प्रमुख हैं, कहती हैं, 4 पीढ़ियों ने मेरी मां के वृक्षारोपण के इस सफर में अपना योगदान दिया। स्कूल की छुट्टियों के दौरान अम्मा की पोती पोते और उनके बच्चे पुराने पौधों की स्थिति देखने और नए पौधों को लगाने के लिए घर आते थे। और वो कहते हैं कि वृक्षारोपण को लेकर जो उत्साह और उमंग होती है वो किसी त्योहार जैसी होती है। पर्यावरण संरक्षण को अपना लक्ष्य मानते हुए देव की अम्मा पेड़ पौधों को उगाने और उनकी देखभाल करने के लिए केवल हरी जैविक खाद का ही उपयोग करती हैं। उनके इस जंगल में सागौन, महोगनी, इमली, आम, चीड़, बांस और उनके जैसे तमाम, करीब गिनती नहीं कर सकते, लेकिन अधिक से 3000 से भी अधिक वृक्ष वहां पर हैं।
0: बिल्कुल। और लक्ष्मी थारू, चीनी संतरा जैसे कुछ दुर्लभ पौधे भी पाए जाते हैं। प्रचुर मात्रा में फल, सब्जियां और फूल देने वाले 200 विभिन्न प्रकार के वृक्षों और झाड़ियों के अलावा इस जंगल में तालाब, एक आर्द्र भूमि और गाय, भैंस, बैल जैसे पशु भी हैं। और देव की अम्मा अपने काम पर गर्व करते हुए कहती हैं, पक्षियों और जानवरों को जाल लगाकर प्रतिबंधित करने के बजाय मैंने उनके लिए पानी और घोंसले की व्यवस्था की है।
1: परिणाम स्वरूप हम जंगल में मोर, बंदर और अमूर बाज, नील गाय, काला पंख वाला स्टिल्ट और पन्ना कबूतर जैसे विदेशी पक्षी भी देख सकते हैं। पर्यावरण के क्षरण को रोकने और प्रदूषण को कम करने के लिए वो कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की आवश्यकता पर जोर देती हैं और कहती हैं पेड़ लगाना सबसे प्रभावी और व्यवहारिक विकल्प है।
0: बिल्कुल। उनका कहना है, हमारा परिवार पिछले 4 दशकों से पेड़ लगाकर कार्बन फुटप्रिंट को कम कर रहा है। उन्होंने जल समस्याओं से निपटने के लिए वर्षा जल संचयन की सुविधा भी उपलब्ध कराई है और अब ये वन एक शैक्षिक और पर्यटन स्थल बन गया है। बड़ी संख्या में वनस्पति विज्ञानी, पर्यटक, शोधकर्ता, छात्र देवकी अम्मा से सामाजिक वानिकी के बारे में जानने के लिए यहाँ पर आते हैं
1: और देवकी अम्मा उन्हें विभिन्न वृक्षों के बारे में बताती हैं, उन्हें उनके महत्व को समझाती हैं और सतत उपयोग एवं विकास के माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के तरीके बताती हैं। अनुरोध करने पर देवकी अम्मा जरूरतमंदों को पौधे भी उपलब्ध कराती हैं। उम्र के कारण अब वो नए पेड़ नहीं लगा सकती हैं और न ही जंगल की देखभाल कर सकती हैं।
0: बिल्कुल। और लेकिन पेड़ों से जुड़ाव बनाए रखने के लिए वो नियमित रूप से टहलने जरूर जाती हैं। उनकी बेटी थैंकमणि कहती हैं, 5 एकड़ जमीन की देखभाल करना आसान काम नहीं है, लेकिन हर सुबह वो 5 मिनट के लिए ही सही टहलने जरूर जाती हैं। क्योंकि वो बहुत कम ही पौधे लगा पाती हैं, इसलिए वो पेड़ों से बातें करती हैं। इस तरह उन्हें जंगल की उपेक्षा का एहसास नहीं होता।
1: और देवकी अम्मा को उनके समर्पण और अथक परिश्रम के लिए अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। सरकार द्वारा इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार और नारी शक्ति पुरस्कार, उन्हें राज्य सरकार द्वारा भी कई पुरस्कार प्राप्त हैं, जैसे वन मित्र पुरस्कार, हरि व्यक्ति पुरस्कार और स्वदेशी विज्ञान पुरस्कार, भूमित्र पुरस्कार और साथ ही अलापुझा जिले का सामाजिक वानिकी पुरस्कार भी उनको प्राप्त हुआ है।
0: और पर्यावरण के प्रति उनके 4 दशकों के समर्पित योगदान को मान्यता देते हुए बेटर इंडिया ने 2019 में उन्हें हम सभी को बचाने वाले 10 नायकों में से एक के रूप में भी शामिल किया था और अब 2026 में देवकी अम्मा को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
1: देखो क्या कितनी अच्छी सी उन्होंने ये चीज करी कि पौधे लगाने शुरू किए, और उनकी इस कहानी से हम सभी को भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भी आसपास की जगहों को हरा भरा रखें, पेड़ पौधे लगाएं, जिससे कि हमारा जो गांव है, हमारा घर है, शहर है, उसके आसपास का सभी वातावरण बहुत खूबसूरत
0: और ये देख के भी अच्छा लगेगा ना कि कितना रचनात्मक कार्य हमने किया है कि देखो जो बीज बोए थे, जो छोटे छोटे से पौधे लगाए थे, वो कितने बड़े पेड़ बन गए।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। तो चलो एक गीत सुनते फिर आगे बढ़ते हैं।

0: मंजरी, डोर से तो प्यार की बंध जाते हैं ना,
1: बिल्कुल बंध जाते हैं, क्योंकि प्यार चीज ऐसी है कि वो हर को अपने आप में बांध लेता है। और जब जहां पर पेड़ पौधों से प्यार होता है तो उसका अलग ही, उसकी अलग ही बात होती है। और जो हमारी जो कलाएं होती हैं उनका भी एक अलग रंग होता है,
0: बिल्कुल,
1: है
0: ना। और जो हमारी परंपरागत जो कलाएं थी ना, वो आज थोड़ी बहुत ऐसे हो रहा है ना कि लुप्त सी होती जा रही है। कुछ कलाएं ऐसी हैं जो लुप्त सी होती जा रही हैं, और उनको सहेजना बहुत जरूरी है,
1: बिल्कुल,
0: जिससे कि हमारी जो पहचान है वो बनी रहे,
1: बिल्कुल।
0: तो आज हम बात कर रहे हैं ऐसी ही कुछ कलाओं की जो लुप्त हो रही हैं, और पूरी दुनिया से हमारा देश अलग ही इसीलिए है क्योंकि ये जो है वो विविध तरीके की संस्कृतियों और समृद्ध परंपराओं का देश माना जाता है। और इस सांस्कृतिक ताने बाने के केंद्र में हमारी समृद्ध लोक कलाएं हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। हालांकि आधुनिकीकरण की जो इस समय दौर चल रहा है उसमें, उसकी तेज गति के बीच में इनमें से कई पारंपरिक कलाएं विलुप्त होने के खतरे का सामना भी कर रही हैं। और इस देश के हर क्षेत्र और समुदाय ने अपनी एक विशिष्ट कला को जन्म दिया है, चाहे वो मधुबनी हो चित्रकला, और या फिर वारली कला, पट्ट चित्र, फड़ चित्रकला, कठपुतली, मिट्टी के खिलौने, हथकरघा, बुनाई, लोक नृत्य, लोक संगीत।

0: ईंट और बांस बेत की शिल्पकला जैसी अनगिनत कलाएं हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं, लेकिन आज समय के बदलते प्रवाह में ये पारंपरिक कलाएं धीरे धीरे लुप्त होने की कगार पर पहुंच रही हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आरती तुमने। और इसी के साथ ही कश्मीर की जटिल लकड़ी की नक्काशी से लेकर बंगाल और उड़ीसा के जीवंत पट्टा चित्र कला, हर एक कला के रूप में अपने साथ सदियों का एक इतिहास है, उनका परंपरा और कहानी अपने अंदर समेटे हुए हैं। फिर भी जैसे जैसे शहरीकरण फैलता जा रहा है, हमारी सदियों पुरानी विरासत और उनके जीवन के पारंपरिक तरीके लुप्त होते जा रहे हैं। और जैसे कि पट्टाचित्र, जो कि उड़ीसा की एक लोक कला है जिसमें कपड़े या कैनवास पर जटिल डिजाइन बनाए जाते हैं, इन चित्रों के विषय अक्सर पौराणिक कथाओं से प्रेरित होते हैं और रामायण और महाभारत के दृश्यों को दर्शाते हैं। पट्टाचित्र चित्रों की जो अनूठी विशेषता होती है, और इनमें पौधों और खनिजों से बने प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है जिससे ये पर्यावरण के अनुकूल होते हैं।
0: बिल्कुल, ये पर्यावरण को देखो, जो परंपरा आगे तुम्हारी जो कलाएं थी पर्यावरण के अनुकूल हुआ करती थी, लेकिन संरक्षण की कमी और घटती मांग के कारण ये कला विलुप्त होने के कगार पर है। और बिदरी वेयर, जो कि एक धातु शिल्प है जिसकी उत्पत्ति कर्नाटक के बीदर में हुई थी, इससे इसमें क्या होता है कि जस्ता और तांबा के काले मिश्र धातु पर चांदी या पीतल के तार जड़े जाते हैं और जटिल डिजाइन और पैटर्न तेज छीनी की सहायता से धातु पर उकेरे जाते हैं। बिदरी वेयर का उपयोग परंपरागत रूप से बर्तन, आभूषण और सजावटी सामान बनाने में किया जाता था। हालांकि श्रम साध्य प्रक्रिया और कच्चे माल की उच्च लागत के कारण ये शिल्प भी अब कुछ ही कारीगरों द्वारा किया जाता है।
1: और इसके साथ ही सुजनी, जो कि बिहार की एक कढ़ाई कला है जिसमें सूती कपड़े पर रंगीन धागों से ज्यामितीय पैटर्न बनाए जाते हैं, ये शिल्प परंपरागत रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता था और रजाई और चादरों को सजाने का एक तरीका था। हालांकि सस्ती मशीनी कपड़ों की उपलब्धता के कारण सुजनी कढ़ाई की मांग में गिरावट आई है। इसके अलावा धोकरा कला, जो कि छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में उत्पन्न धातु ढलाई की एक कला है, इसमें मोम ढलाई तकनीक का उपयोग करके जटिल डिजाइन और पैटर्न बनाए जाते हैं।
0: और बिल्कुल, इसके साथ में हम धोकरा कला अपनी अनूठी शैली के लिए भी जानी जाती है और इसका उपयोग होता है अक्सर मूर्तियां और सजावटी वस्तुओं को बनाने में। और कठपुतली कला, जो कि राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला है जो आज भी कहीं कहीं होती है, तो जो कभी गांव गांव के लोगों का मनोरंजन करती थी, कठपुतली के माध्यम से लोक कथाएं, वीर गाथाएं और सामाजिक संदेश प्रस्तुत किए जाते थे। लेकिन आज क्या है कि मोबाइल और डिजिटल मनोरंजन के दौर में ये कला भी कहीं ना कहीं खोती जा रही है।
1: बिल्कुल, और इसी प्रकार बहुरूपिया कला भी धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। आरती, कलाकार विभिन्न पात्रों का रूप धारण कर लोगों का मनोरंजन करने के साथ साथ सामाजिक संदेश भी देते थे। लोक नाट्य की कई विधाएं भी आज संकट में है। महाराष्ट्र की तमाशा, उत्तर प्रदेश की नौटंकी, कर्नाटक का यक्षगान, बंगाल की यात्रा, उत्तराखंड की पांडवानी जैसी अनेक प्रस्तुतियां कभी जनजीवन का अभिन्न हिस्सा हुआ करती थी, आज इनके दर्शक और कलाकार दोनों घटते जा रहे हैं।
0: बिल्कुल, और हम बात करें तो इसके अलावा पिंजराकारी, जो कि कश्मीर की एक अत्यंत प्राचीन और दुर्लभ हस्तकला है जिसमें देवदार जैसी मजबूत जो लकड़ी होती थी उस पर बिना कीलों या धातु के सहारे, सोचिए, अत्यंत बारीक जालीदार डिजाइन तैयार किया जाता है। ये कला मुख्यतः खिड़कियों, दरवाजों, रोशनदानों, बालकनियों और धार्मिक और ऐतिहासिक इमारतों की सजावट में प्रयोग की जाती रही है।
1: और इसकी विशेषता यह है कि ये लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को इतनी कुशलता से जोड़ा जाता है कि उनसे सुंदर ज्यामितीय आकृतियां बन जाती हैं। लेकिन बढ़ती लागत, सीमित बाजार और नई पीढ़ी की घटती रुचि के कारण पिंजराकारी और पारंपरिक लकड़ी की नक्काशी आज संकट का सामना कर रही है। पिंजराकारी और कश्मीरी नक्काशी केवल हस्तकला नहीं बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक पहचान, धैर्य, सृजनशीलता और शिल्प कौशल का जीवंत प्रतीक है। आर्थिक कलाएं तो इतनी सारी हैं कि एक उसमें समेटना बहुत ही मुश्किल होता है।
0: तो बिल्कुल इसकी तैयारी करेंगे कि हम अगली बार और कलाओं को लेकर आए जो लुप्त होती जा रही हैं। तो ये जो पिंजराकारी जो कला है सच में बहुत ही ज्यादा जटिल होती है। तो इस तरह की जो कलाएं होती हैं जटिल तो होती ही हैं डिजाइन और पैटर्न से, लेकिन इनको हम फिर भी करते हैं तो इनको सहेजना जरूरी है।
1: बिल्कुल, और इसके साथ साथ हम गीतों को भी सुन लेते हैं।

0: तो आरती देखो, इतना प्यारा सा ये गीत हम लोग ने सुना और जो हमारी लोक कलाएं हैं उसके बारे में क्या संदेश लिखा हुआ है?
1: बहुत से संदेश आए हैं। तो एक हमारे साथी हैं जो कहते हैं कि भारत की लुप्त होती पारंपरिक कलाएं हमारी प्राचीन संस्कृति, इतिहास और जीवन शैली का अनमोल हिस्सा है, जो आधुनिकता और मशीनी युग के प्रभाव से धीरे धीरे गायब हो रही हैं। इनमें मुख्य रूप से कठपुतली कला है और सिक्की घास की कला और आला गायन शामिल है।
0: और देखो, बातें करते करते समय हो चला है एक अंतराल का, तो लेते हैं एक अंतराल और छोटे से अंतराल के बाद फिर हम लोग सखी सहेली कार्यक्रम में हाजिर हो जाएंगे।
1: बिल्कुल।

0: अंतराल के बाद सखी सहेली कार्यक्रम में फिर सभी का करते हैं स्वागत। तो आरती बताओ, कौन सा संदेश हम लेकर पढ़ने वाली हो?
1: बिल्कुल, लेख हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि चिट्ठियों का जमाना भी गजब था, जब बहुत ही सुंदर लिखाई से चिट्ठी के बारे में बात कर रहे हैं उन्होंने, और चिट्ठियों की इतना बढ़िया उन्होंने लिखा था कि हमने सोचा कि पहले इन्हीं ले लेते हैं सीखो, फिर हम कलाओं की बात करेंगे। तो चिट्ठियों का जमाना भी गजब था, जब बहुत ही सुंदर लिखाई से मन के जज्बात जो थे वो कागज पर उकेर दिए जाते थे। डाके जब घर के सामने घंटी बजाते हुए निकलते थे तो दौड़कर दरवाजे पर आ जाते थे कि शायद हमारी भी कोई चिट्ठी हो। रक्षाबंधन पर भाई को लिफाफे में रखकर सुंदर राखियां, कुमकुम, अक्षत भी भेजे जाते थे। फिर जब जब जवाब आता था तो उस चिट्ठी को भी बार बार पढ़ते थे और बहुत संभाल कर रखते थे। ऐसे कितने ही पत्र हैं जिन्हें आज भी किसी की यादगार के तौर पर संभाल कर रखा है।
0: और देखो,
1: तो प्यारा सा था ना, रुका ही नहीं गया।
0: देखो हमारे साथी लिखते हैं, आरती, पारंपरिक कलाएं हमारी संस्कृति, इतिहास और लोक जीवन की अमूल्य धरोहर हैं। और लोकगीत, लोक नृत्य, हस्तशिल्प, मिट्टी के बर्तन, बुनाई, कठपुतली, चित्रकला और कई अन्य कलाएं हमारी पहचान को जीवंत बनाए रखती हैं। लेकिन आधुनिक जीवन शैली, मशीनों के बढ़ते उपयोग और बदलती रुचियों के कारण ये पारंपरिक कलाएं धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। अनेक कलाकारों को उचित सम्मान और आर्थिक सहयोग नहीं मिल पाने से नई पीढ़ी भी इन कलाओं से दूर होती जा रही है। यदि समय रहते इनका संरक्षण, प्रचार प्रसार और कलाकारों को प्रोत्साहन दिया जाए तो हमारी सांस्कृतिक विरासत आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रह सकती है। पारंपरिक कलाओं को बचाना केवल कलाकारों की नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। बहुत सही बात आपने लिखी है, और हमें अपनी कलाओं को बचाने का प्रयास पूरा पूरा करना चाहिए।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी भी है, क्योंकि हमें जो पीढ़ी आ रही है उसको भी पता चलना चाहिए कि क्या क्या कलाएं थी हमारे यहाँ। तो एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि लुप्त होती जो पारंपरिक कलाएं हैं, ये विषय बहुत ही अच्छा लगा। आजकल हमारी जो पारंपरिक कला है, जैसे कि लोग थे, लोक संगीत का ये बहुत ही सुनने में ज्यादा अच्छा लगता था, वो भी कम हो गया है। नुक्कड़ नाटक भी हुआ करते थे, वो भी अब कम हो गए हैं। अब सोशल मीडिया का जमाना है तो लोग इन सब जो पारंपरिक कलाएं हैं उनको देखना ज्यादा नहीं पसंद करते हैं, तो सुनना ही पसंद नहीं करते। लेकिन मुझे लगता है कि हमें उन सब चीजों की वापस जाना चाहिए जो इस पारंपरिक कला के द्वारा अपनी आजीविका चलाते हैं, उनकी सहायता करनी चाहिए हमें। और ऐसे ही हम उनको कर सकते हैं, जब हम जो पारंपरिक कलाएं हैं उनको जीवित रखें तभी हम उनकी सहायता कर सकते हैं इस तरह से।
0: बिल्कुल, और लुप्त होती है पारंपरिक कलाएं के बारे में लिखते हैं हमारे साथी, भारत अपने समृद्ध कलाकारों का एक महत्वपूर्ण देश रहा था और रहा है भी, और अब वो भी है। भले ही पूजा स्थलों पर उकेरी गई कला को अब उतने तन्मयता से हम आज के इस मोबाइल युग में नहीं उकेर रहे हैं, किंतु समय के साथ लुप्त हुई कलाओं की तरफ अग्रसर तो हम हो ही रहे हैं, जिसके फलस्वरूप भी विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन जैसे कार्यक्रमों के जरिए अपने विभिन्न कलाओं को प्रदर्शित करने में आगे आते हुए विभिन्न प्लेटफार्मों पर प्रदर्शित भी कर रहे हैं, किंतु अभी भी बहुतेरी कलाएं लुप्त प्राय ही हैं। और उस तरफ भी हमें अग्रसर होते रहना चाहिए, क्योंकि अभी हम अपने रोजी रोटी के लिए ही इनके वर्ण कर रहे हैं, जबकि इन कलाओं का क्षेत्र बहुत ही व्यापक और बहुत ही विशाल है। और कहना चाहिए कि आपके अंदर जो भी कला है आपको आती है, आपके परिवार में किसी बुजुर्ग को जो कलाएं आती हैं, तो उनको सबको सिखाना शुरू करें, और सीखने की एक ललक भी होनी चाहिए, तभी आप सीख सकते हैं, तो आप कला को बहुत आगे तक जीवंत रख सकते हैं।
1: क्योंकि जो ये कलाएं हैं ना, ये हमारे देश की पहचान है, इनको हमें सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। तो अब हम एक गीत सुनें।

0: जब
1: जब
0: जब तुम मेरे सामने आए, लेकिन
1: जब जब ये चिट्ठियों के संदेश मेरे सामने आए तो बिल्कुल मन पे संयम रहता ही नहीं है।
0: और जब जब चिट्ठियां घर में आती हैं तो उनको लेने के लिए उनको कि आज हम सबसे ज्यादा चिट्ठी उठा ले, हम पढ़ेंगे, तो उसका एक अलग ही मजा आता है,
1: बिल्कुल,
0: है ना। तो हमारे साथी क्या लिखते हैं इसके बारे में?
1: साथी लिखते हैं, चिट्ठियों का वो जमाना भी क्या खूबसूरत था, कागज पर लिखे हर शब्द में दिल की धड़कन बसती थी, डाकिये की आहट सुनते ही उम्मीदें दरवाजे तक दौड़ जाती थी, स्याही से लिखे अल्फाज बरसों तक यादों की खुशबू महकाते रहते थे, ना कोई जल्दबाजी थी, ना एक पल में जवाब पाने की चाह, बस इंतजार था, अपनापन था और रिश्तों की सच्ची गर्माहट थी। आज संदेश पल भर में पहुंच जाते हैं, लेकिन उन हाथों से लिखी चिट्ठियों जैसा एहसास, अपनापन और भावनाओं की गहराई आज भी बेमिसाल है।
0: क्या बात है। और बहुत लोगों ने चिट्ठियां संभाल कर भी रखी होंगी आदि। और हमारे साथी लिखते हैं कि मुझे भी कुछ कहना है जो

0: मजा खत यानी चिट्ठियों के इंतजार में हुआ करता था, अब वो कहाँ। चाहे वो माता पिता हो या पति पत्नी या हो भाई बहन, अब मोबाइल टेक्नोलॉजी के आने से सब छीन गया है। और वाकई में सही बात है, चिट्ठियां लिखना लोगों का कम हो गया है। और एक साथी लिखते हैं कि आज विषय वस्तु अच्छे हैं, खासकर चिट्ठियों का जमाना। उंगलियों के कुछ स्पर्श से मीलों दूर बैठे व्यक्ति का संदेश पलक झपकते ही पहुंच जाता। आज का संचार माध्यम के तीव्र शोर के बीच कहीं पीछे छूट गया है वो शांत, धैर्यवान और आत्मीय चिट्ठियों का जमाना। वो एक ऐसा दौर था जब संदेश सिर्फ सूचना नहीं बल्कि हृदय की धड़कन और भावनाओं का सजीव दस्तावेज हुआ करते थे। डाकिया जब खाकी झोला टांगे गली में आता था तो ऐसा लगता था जैसे पूरे मोहल्ले की उम्मीदें और खुशियां उसके साथ चल रही हों। चिट्ठी का आना एक उत्सव होता था। डाकिया सिर्फ कागज का पुर्जा नहीं लाता था, वो दूर देश से सहेज कर भेजी गई अपनों की सांसें और सिसकियां लेकर आता था। कागज का चुनाव स्याही का रंग और कलम की बनावट में लिखने वाले का व्यक्तित्व झलकता था। चिट्ठियों में एक अद्भुत इंतजार का सौंदर्य था। संभाल कर रखी गई वे पीली पड़ चुकी चिट्ठियां आज भी जब खुलती हैं तो गुजरे जमाने की खुशबू पूरे कमरे में बिखेर देती है। क्या बात है,
1: बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। और एक और साथी है जो लिखते हैं कि चिट्ठियों के जमाने का मेरा अनुभव जीरो है। मैंने आज तक कभी किसी को चिट्ठी नहीं लिखी, जबकि मेरे पापा पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर थे। उसके बावजूद कभी मौका नहीं आया क्योंकि हमारे जमाने में लैंडलाइन फोन हुआ करते थे। अरे फिर भी आपको लिखना चाहिए था ना।
0: और हमारे साथी लिखते हैं आती कि चिट्ठिया या पत्र सबसे पहले स्कूल में सिखाया जाता था, उसके बाद हम लोग घर में अपने से बड़ों को देख कर सीखते हैं कि क्या क्या लिखना है। मैंने भी अपने बड़ों से सीखा है। मेरे बड़े भाई बहुत बढ़िया चिट्ठी लिखा करते थे, सुंदर सुंदर लिफाफे आदि थे और खूबसूरत खूबसूरत लेटर पैड भी ले लेते थे। जब बड़ा हो गया, किसके पत्र लिखने लगा तो मैं भी सुंदर सुंदर लिफाफे लाता था और सुंदर सुंदर लेटर पैड। मैंने शुरू में कभी लिखा हुआ नहीं तो मतलब उन्होंने शुरू किया था, हमेशा खूबसूरत लिफाफा खूबसूरत लेटर पैड लिया करता था और अच्छी सुगंध लेटर में तो खूबसूरत पाउडर भी डाल दिया करता था, महकता हुआ यानी कि पाउडर डाल दिया करता था। इन्होंने खूबसूरत लिखा है तो बाद में तरीके से साफ भी कर दिया जाता था। कभी कभी सुगंध के लिए करता था और कभी कभी उसमें इतर भी डाल दिया करता था।
1: चिट्ठी जिस तक भी पहुंचती होगी, वाह क्या बात है। और एक और साथी जो लिखते हैं कि वो भी क्या दौर था, और उस समय जब कहते हैं कि लिफाफे में गुलाब की सूखी गुलाब की पत्तियां, तो कभी चिट्ठियों में हालचाल के साथ कुछ शायरियां भी लिखी होती थी। एक ही चिट्ठी को ना जाने कितनी बार पढ़ा जाता था। उन हाथों से लिखी चिट्ठियों में आत्मीयता भी होती थी और स्याही की सौंधी जो महक होती थी उसमें अपनापन भी होता था। आज भी जब कभी फुर्सत में पुरानी चिट्ठियों को पढ़ती हूँ चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ आंखें भीग जाती हैं।
0: क्या बात है। और इसके साथ ही हमारे एक साथी लिखते हैं, उस जमाने में चिट्ठी सिर्फ कागज ही नहीं पूरा परिवार हुआ करती थी। पिताजी का प्रेम, माँ की ममता और बहन का प्यार उसमें घुला होता था। बेटा समय से खा लेना, तबीयत का ध्यान रखना, बहन की खुशी राखी और गुलाब की पंखुड़ी के साथ आती, भैया त्योहार पर आ जाना, पड़ोस की खबर, खेत की फसल, गांव का मेला, सब उसी दो पन्नों में समा जाता। चिट्ठी आने में महीना लग जाता था, इसलिए हर शब्द तौल कर लिखा जाता था। डाके की घंटी बजते ही घर में हलचल मच जाती। खत को पहले बड़े पढ़ते फिर सबको सुनाते, एक चिट्ठी महीनों का इंतजार और सुकून हुआ करती थी। मैंने अपने पिताजी को बहुत पत्र लिखे क्योंकि सर्विस के चलते वो बाहर रहते थे। उनके लिखे पत्र आज भी मेरे पास सुरक्षित हैं। आज मोबाइल में तुरंत सब कुछ मिल जाता है, पर उस कागज में जो परिवार बसता था, जो दर्द और दुआ होती थी, वो अब मोबाइल की स्क्रीन में कहीं खो गई है। वाकई सही बात है, उस जमाने में जो चिट्ठी का मजा था वो अलग ही था। लेकिन आज भी कोशिश कीजिए कि अपनों को आप चिट्ठी लिखिए, क्यों व्हाट्सएप पे भेज दें।
1: बिल्कुल। अब एक साथी है जो लिखते हैं कि चिट्ठियों का जमाना बहुत ही अच्छा था, जब भी मन हो निकाल लो और पढ़कर खुश हो जाओ। मैंने तो ढेर सारी चिट्ठियां अभी भी संभाल कर रखी हुई हैं और जब मन होता है निकाल कर पढ़ लेती हूँ। रिश्तेदारों के उनके खत आते थे, चिट्ठियां होती थी है ना, वो जो अपनी सहेलियों को लिखती थी, तो जबकि वो इस शहर में थी पर जब भी कॉलेज बंद होता तो उसे भी चिट्ठी लिखती थी। मेरे पापा जी बोलते थे कि जितनी देर में चिट्ठी मिलेगी उससे जल्दी तो तुम उसके घर पहुंच जाओगी, घर में मिलोगी जाके।
0: चलो फिर इसी बात पर एक गीत सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं आती,
0: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो आरती देखो कितनी सारी हम लोग की बातें हैं, है ना,
3: और हमारे जो साथी हैं वो लिखते जा रहे हैं। तो एक हमारे साथी हैं लिखती हैं कि चिट्ठी लिखना, अपने मन की भावना अपनों तक पहुंचाना बड़ी पुरानी परंपरा है, और पुराण कथा में विरह व्याकुल दमयंती ने अपनी पीड़ा कमल पत्र पर लिखी थी और राजहंस के साथ अपने प्रियतम नल राजा के पास पहुंचाई थी। पौराणिक ऐतिहासिक काल में भोजपत्र और ताड़पत्र, ताम्रपट या कपड़े पर संदेश लिखकर भेजे जाते थे। बाद में कागज, कलम, स्याही वाले चिट्ठियों का सुहाना जमाना आ गया। चिट्ठी में प्यार, भाव, भावनाएं, मूर्त अमूर्त कल्पनाएं, सुंदर सुहाने सपने, सब कुछ साकार होता है, और साथ ही साथ अपने प्रिय व्यक्ति का हस्ताक्षर, उसकी लिखाई से स्पर्श का व्यक्ति की अस्तित्व का एहसास भी मिल जाता है। संजोई ही चिट्ठियां जब भी चाहे हम देख सकते हैं। चिट्ठी का इंतजार, बेचैनी, रंग रूप, रस गंध, ये सारी बातें आज की डिजिटल चैट, ई और इन सब चीजों में कहां मिलती हैं।
2: और हमारे साथी एक लिखते हैं कि पहले चिट्ठियों को एक नुकीली तारनुमा जिसमें आधार में गोल लकड़ी रहता थी, उसमें घोप कर सुरक्षित रखा जाता था। 4 महीने पहले गांव में मुझे 1978 को पिताजी को मेरा लिखा स्याही वाला अंतरदेशी मिला। अब पिताजी तो नहीं, मगर उस चिट्ठी को संभाल कर रखा है इन्होंने। और लिखते हैं कि चिट्ठियों का जमाना भावनाओं, सब्र और एक खास अपनापन का दौर था। लोग पोस्ट कार्ड, अंतरदेशी पत्र पर लिफाफों का इंतजार करते थे।
3: बिल्कुल। और एक हमारे साथी जो लिखती हैं कि कभी एक वक्त था जब चिट्ठियां रिश्तों की सबसे प्यारी आवाज हुआ करती थी। हर शब्द सोच समझ कर लिखा जाता था और हर पन्ने में अपनेपन की गर्माहट बसती थी। शायद यही वजह है कि आज भी पुरानी चिट्ठियां हाथ में आते ही बीता हुआ समय फिर से मुस्कुरा उठता है। पहले चिट्ठियां सिर्फ खबरें नहीं लाती थी, वो दूरियों को भी थोड़ा कम कर देती थी। कागज पर लिखे शब्दों में धड़कनों की सच्चाई होती थी और स्याही में अपनेपन का रंग। आज संदेश पल भर में पहुंच जाते हैं, लेकिन वो इंतजार, वो मिठास बिल्कुल छूट जाती है। तो पुरानी चिट्ठियों की सबसे खास बात यही है कि उन्हें पढ़ने के बाद उन्हें फेंक नहीं सकते हम। वो किताबों में, संदूकों में, यादों में बरसों तक संभाल कर रखी जाती थी, क्योंकि वो कागज के टुकड़े नहीं, किसी के अपने दिल से निकले हुए शब्द हुआ करते थे।
2: चलो एक गीत सुन।

0: आती तो, बारिश के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं कि बारिश जब आ जाती है तो सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और घर में कैसे रखें सफाई, तो इसके लिए देखो घर के जो पावदान है उनको आप नियमित धोएं, गीले हो तो हटाएं, और जो बाहर पहन जाने वाली चप्पलें होती हैं उनको बाहर रखें, घर में अलग चप्पलों का यूज करें, और घर में कहीं भी अगर आपको टूट फूट लग रही है या छत पर भी टूट फूट लग रही है, तो नालियों में कुछ कचरा फंसा है तो वहां पर भी आप ध्यान दें कि उसकी सफाई नियमित करते रहें, और घर की दीवार जो होती है वो कहीं चूना पपड़ी कहीं टूट फूट दिख रही है तो उसको समय रहते ही उसमें आप पेंट कलर वगैरह करा ले तो अच्छा रहता है।
1: और हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि बारिश के मौसम में नमी सीलन और कीचड़ की वजह से घर जल्दी गंदा होता है, तो फर्श को एकदम सूखा रखें, पोछे के पानी में कीटाणुओं को दूर करने वाला कोई लिक्विड मिलाइए, या बदबू और कीड़ों से बचाने के लिए कपूर रख सकते हैं, या फिर नीम के तेल का स्प्रे कर सकते हैं। आप ये सब चीजें करें
0: बिल्कुल। और जो चीजें फिसलने का बहुत डर रहता है, तो जहां भी आप देखें तो वहां पर आप उस कपड़े से पोछा लगाएं, और पोछे में नमक या कपूर डालकर भी आप पोछा लगा सकते हैं, जिससे कि कीटाणु नहीं आएंगे, और घर के दरवाजे खिड़कियों की नियमित पोछाई करते रहे, जिससे कि वहां पर नमी से क्या होता है धूल गर्दा जमा हो जाती। तो इस तरह का बारिश के मौसम में हमें ख्याल रखना चाहिए। और फिलहाल तो एक सुनते हैं गीत।

0: तो आरती देखो प्रोग्राम बातें करते करते समापन की ओर हो गया है, तो आज सभी से लेते हैं विदा। तो सभी को मंजरी वर्मा
1: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

कल नहीं आना मुझे न बुलाना के मारे गताना जमाना। कल नहीं आना मुझे न बुलाना के मारे गताना जमाना।

देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं जाना है तो माना नहीं मुझे पहचाना नहीं दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम

देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं जाना है तो माना नहीं मुझे पहचाना नहीं दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे किसी में है दम यहाँ ठहरे तो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम

0: दारान शाह समान
1: वजीर बाहर दुश्मनों के हमले का मुंह तोड़ जवाब दो।